0: ऐसा नाम निरंजन कोई जे को मन जाने मन कोई
1: पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावह दरगहमान पंचे सोहै दर राजान पंचा का गुर एक ध्यान जे को कह करे विचार करते कह करना नाही समार ताहुल धर्म दया का भूत संतोख थाप रख्या जिन सूत जे को बुझै होवै सच्यार तबलै ऊपर कीता भार धरती होर परै होर होर

असंख जाप संग पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूरम भक्सार असंख मोहन लेवल

निरंकार असंख मूरखांत कोर असंख चोर राम कोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गाल वड़ हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच माल पाक खाए असंख निंदक सिर करें भार नानक नीच कह विचार वारिया ना जावा एक बार जो तुद भावै सही भली कार तू सदा सलाम निरंकार असंख नाम असंख थाम गम गम असंख लो असंख है सिर भार होए अखरी नाम अखरी सला अखरी ज्ञान गीत गुण गा अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजो वखाण जिने लिखे ते सिर नाए जे फरमाए ते ते पा

पै जाए। धर्म कण कायो धर्म ज्ञान खंड काया को कर्म केते पवन पानी वैसंतर केते कान महेश केते बरने घाट कड़िया है रूप रंग के वेश केतियां करम भूमि मेर केते केते धूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਰਾਪਤਾ 98.5 FM
1: ਫਰੀडम ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਹੈ ਸੋਫੇ ਰੇਨ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਬਾਰੀ ਸੁੱਤਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਗੱਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ 20 ਤੋਂ 60% ਤੱਕ ਛੂਟ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਵਿਕਰੀ ਹੁਣ ਚਾਲੂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਫਰੀडम ਤੇ
2: मैं बहुत एहसास महसूस कर रहा हूं कि आज हमारे प्रोग्राम को इज्जत बख्शने के लिए डॉक्टर सुजीत पात्र साहब तशरीफ फरमा है आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं पद्मश्री साहित्य अकादमी अवार्ड ना जाने कितने अवार्ड इनकी नजर हुए हैं मैं ज्यादा बात ना करते हुए मतलब मैं सबसे गुजारिश करता हूं इसी शेर के साथ के अंबड़ी मैनू आखण लगी तू धरती का गीत रहे

0: चीज विक्री ते है सारे घरेलू सामान ते 50% तक छूट प्राप्त करो इस विच गलीचे लाइटिंग बिस्तर दी चादर दीवार कला शीशे अते होर भी बहुत कुछ शामिल हन जल्दी करो विक्री हुन चालू है सिर्फ फ्रीडम ते
1: की है तेरे शहर विच मशहूर हां वाह जे नजर

ते हर चीज विक्री ते है सारे घरेलू सामान ते 50% तक छूट प्राप्त करो इस विच गलीचे लाइटिंग बिस्तर दी चादर दीवार कला शीशे अते होर भी बहुत कुछ शामिल हन जल्दी करो विक्री हुन चालू है सिर्फ फ्रीडम ते